17,508 पर सदा तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। लीजिए आखिर में अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए। यूरोपीय यूनियन और खलीजी तआवुन कौंसिल ने आपने हुर्मुज़ पर किसी भी रियासत के खुद मुख्तारी या कंट्रोल के दावे को बैन अल-अक़वामी कानून के खिलाफ करार दिया और इस अहम आबी गुजरगाह से बैन अल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए इजाज़तनामे या किसी भी किस्म के मुआवजे की मुखालफत की है। अमरीका ने उर्दन पर मोहलिक ईरानी हमलों के बाद ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने कहा है कि अमरीकी हमलों में बच्चों और औरतों समेत 50 अफराद हलाक हो गए हैं। सामिन, इसके साथ ही हमारे आज की नशियात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और बहुत खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।

सदके के पत्थर और थैले में रोटी, खामोश नेकी का वकार। अस्सलाम वालेकुम सामी। सामी, ज़रूरी नहीं कि वकार किसी शानदार महल में ही हो, बल्कि ये दिलकशी बाज़ औक़ात किसी महल्ले की मस्जिद के खामोश गोशे में रखे पत्थर के छोटे से खाने में पोशीदा हो सकती है। नेकी अपने हकीकी बुलंदी इसी वक्त हासिल करती है जब वो नज़रों से ओझल हो। हमारे खित्ते का ये उसूल के दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, एक नसीहत नहीं बल्कि संगमरमर पर नक्श होकर एक समाजी हुस्न और खामोश मुआहदा बन गया है। आज हम नेकी की सबसे खामोश, पुरसरार, बावकार और शायद सबसे अजीम सूरत का जिक्र करेंगे। वो मकामात जहाँ लेने वाला शर्मिंदा नहीं होता और देने वाला तकब्बुर में मुबतला नहीं होता। इन जगहों के नाम हैं सदके के पत्थर और इनकी आज की झलक थैले की रोटी में नुमाया नजर आती है। अगर आप तैयार हैं तो आइए खामोश नेकी के इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। सदियों पहले के इस्तांबुल, इसके ज़िला उस्कुदार या दरवेशों के शहर बोर्सा का तसव्वुर कीजिए। आधी रात का वक्त है, महल्ले के बासी अपने अपने घरों में जा चुके हैं। एक साया खामोशी से एक सतून के करीब आता है। ये सतून तकरीबन 2 मीटर बुलंद है और संगमरमर से बना हुआ है। इस सतून में एक प्याला नुमा गहरा घड़ा तराशा गया है। यही संगी सतून सदके का पत्थर है। वह शख्स ना तालियाँ चाहता है ना ही शुक्रिया का तलबकार है। वो अपने चंद सिक्के इस प्याला नुमा खाने में रखता है और अपने नाम और मुकाम को जाहिर किए बगैर जिस खामोशी से आया था, इसी खामोशी से रात की तारीकी में गुम हो जाता है। ये पत्थर हमारी तहजीब में इंसानी वकार की अहमियत की रोशन अलामत थे। सिर्फ इस्तांबुल के इलाकों उस्कुदार, दुआनचिलर, अयूब और सुलेमानिया में कभी ऐसे 160 से ज़ायद सदका के पत्थर मौजूद थे। इस निज़ाम की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इन पत्थरों में रखी हुई रकम कई दिनों बल्कि कई हफ्तों तक जूं की तूं पड़ी रहती थी। जब कोई हकीकी ज़रूरतमंद आता तो वो भी ऐसे वक्त का इंतखाब करता जब आसपास कोई मौजूद ना हो। वो सिर्फ अपने इस दिन की ज़रूरत के मुताबिक, मसलन एक रोटी या एक वक्त के खाने के बराबर रकम लेता और बाकी रकम अपने बाद आने वाले उस शख्स के लिए छोड़ देता जो शायद इससे भी ज़्यादा मोहताज हो। मौर्रखीन और गैर मुल्की सयाह हैरत से लिखते हैं कि कई मरतबा इन पत्थरों में सोने के सिक्के हफ्तों तक पड़े रहते, लेकिन कोई भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करता था। ये सिर्फ इमदाद का निज़ाम ही नहीं था बल्कि एक ऐसे माशरे की यादगार था जो एक दूसरे पर बेमिसाल एतमाद रखता था और जिसने अपने नफ्स की तरबियत कर रखी थी। खामोश नेकी का एक और शाहकार महल्ले की पुरानी करियाना दुकानों के जर्द सफ़ों वाले खाता दफ्तरों में छपा हुआ था, जिन्हें ज़िम्मिम दफ्तर कहा जाता था। ज़िम्मिम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब उधार या ज़िम्मेदारी है। रमज़ानुल मुबारक में महल्ले का कोई खुशहाल मर्द या औरत किसी ऐसे करियाने की दुकान पर जाता जिससे सौदा सलफ लेने वाले लोगों को वो जानता भी नहीं था। वो खुशहाल इंसान